भगवती जी सहाय, वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं, प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याय, फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास है होई सहाय, अर्जन हर गोविंदनो सिमरो श्री हर राय, श्री हर कृष्ण जी त्याई है।

0: सो गिरही सो दास उदासी जिन गुरमुख आप पछाणे। आओ थोड़ा अपनी असलियत वाल नजर मारिए। मैं एक सवाल उठाना हां, असी सारे जितने इत्थे ग्रिस्ती बैठे हां, कि साड़ी जिंदगी की टॉप मोस्ट प्रायोरिटी यह है कि असी अपने आपे की खोज करनी है, इसका अपने अंदरों उत्तर लभो, अपने अंदर रिफ्लैक्ट करो, अपने अंदर ध्यान नाल इस गल का जवाब लभो कि तुसी जिंदगी दे विच, असी जिंदगी दे विच कि यही मुख काम जो है उसनू अपने मुख रखिया होया है अपने आप नू पहचानन दा, जां ये कोई इशू ही नहीं है साड़ी लाइफ का, जां ये कोई साडे वास्ते खास कोई समस्या नहीं है, जां ये कोई साडे वास्ते बहुत अहम चीज नहीं है, इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। अपने अपने अंदरों जवाब लभण की सात संगत कोशिश करो। गुरु बाबा जी की हजूरी दे विच असीं बैठे हैं ईमानदारी दे नाल कि असीं अपने आप की खोज करन दे वास्ते भी कोई टाइम निकालते हैं या नहीं निकालते, जां कुछ साडा ध्यान है इस पासे या नहीं, साडी सोच है इस पासे या नहीं, कि असीं अपने आपे की खोज करन दे विच लगे हुए हैं जां दिनों दिन अपने आपे नूं गुआई ही जा रहे हैं, खोई ही जा रहे हैं। गुरु बाबा जी ने स्पष्ट आख दिता है कि सो गिरही ओही ग्रिस्ती असल ग्रिस्ती है, ओही सन्यासी असल उदासी है जिसकी जिंदगी का आदेश एक ही है कि उसने अपने आप नू लभना है कि मैं कौन, मेरी असलियत की है, अपने मूल नू पछानना है। महाराज जी ने साडे ते सवाल भी किया है, कहते हैं सुनो रे तू कौन, कहां ते आयो, कहते भी तू कौन है, कितों आया है, तेन इस चीज की खबर है। बस जिस दिन तू ये लभ लेगा कि तू कौन है, जिस दिन तू ये पहचान जाएगा कि तू कौन है, उस दिन कहते हैं अपना आप पछाणिया नाम निधान पाया, अपने आपे नू पछानना ही नाम की प्राप्ति है। कोई पूछे नाम की प्राप्ति की चीज है, नाम की है, अपने आपे नू पहचानना ही नाम की प्राप्ति है, और अपने आपे नू पहचानन तो बाद के मैं आ हां, फिर मैं अपने आप नू असल तौर पे प्यार करांगा कि मैं आ हां। जदों किसी नू ये पता चल जाएगा ना कि मैं कौन हां, उस दिन उसनू अपनी असली हस्ती का पता लगेगा जो कितनी महान है, वो प्यार करन दे योग है, और फिर उसनू ये भी नजर आएगा कि ये जो दूसरे हन ये कौन हन, मेरे पे इना अंतर की है। उत्थे जाके डुअलिटी द्वैश मेर ते सब खत्म होएगी जदों अपने आपे दी पहचान हो जाएगी। सो गिरही सो दास उदासी जिन गुरमुख आप पछाणिया। सो ग्रिस्तियां नू इस भुलेखे च इस टपले च इस गलत फहमी च नहीं रहना चाहिदा कि असी इना दुनियावी रुझेवियां दे विच इतने रुझ जाइए अते इतने सुस्त हो जाइए, इतने आरामदेह हो जाइए, इतने लेजी हो जाइए कि एक सन्यासी साधु वर्गा जीवन ग्रिस्ती का भी होना चाहिदा है, ते ओ ना हो। आपनू नहीं बुझिया कोई भी बख्शिया नहीं जाएगा, चाहे वह ग्रिस्ती है, चाहे कोई काजी है, चाहे कोई मुल्ला है, चाहे कोई जंगम है, जोगी है, पगवे पेघवाला है, कोई भी चाहे है, जितनी देर तक अपने आप की पहचान नहीं कर लेता अकाल पुरख की दरगाह दे विच कहिंदे ओ बख्शिया नहीं जाएगा। कहिंदे हन
1: काजी मुल्ला होवे शेख,
0: कोई काजी होवे चाहे कोई मुल्ला होवे, साडे वल लगा लो कोई भाई होवे, ग्रंथी होवे, कीर्तनिया होवे, کوئی شیخ ہووے
1: جوگی جنگ میں پگوے پیک
0: کوئی جوگی ہووے کوئی جین مت دا ہووے کوئی پگوے پیک والا ہووے کہندے ہن
1: کو گرہی کرما کی سند
0: چاہے کوئی گرستی ہووے گرہی ہووے جڑا سارے کرم کرم تے نبھاندا ہووے کدے پاٹھ کرا لیا کدے لنگر کرا لیا کدے تیرتھاں تے جائے درشن دیدارے کر آئے اتے باقی دنیاوی ذمہ واریاں بھی ساریاں نبھاندا ہووے لوکاچاری بھی پوری کردا ہووے کو گرہی کرما کی سند سارے کرما نوں پوری طرح ملاندا ہووے کردا ہووے پر کہندے ہن

जेड़ी विचार करनी है बैठ के करो, क्योंकि विचार बह के हुंदी है, शांत मन नाल हुंदी है, तलखी नाल नहीं।

कहती है मेरे सतगुरु की शानों में उसी दम हो गई पागल, इशारा हो तो ऐसा हो। लिखारी कहता है एन उस वेले चल खिलर गया, उसने बोली मारी बड़ी सख्त, इन्हें जवाब ने इशारा बड़ा कसदा किया जी आ हाल हो गया। सतगुरु कह लगे नर्द पुग गई है। गुरु अंगद देव जी कह लगे नर्द पुग गई है, एदा दी गल। मुर्शिदे कामल भाई जवाहर सिंह साहब जी ने कर दिती, बाबा नाभ कमल जी दे वड्डे वडेरे मुर्शिदे कामल। भाई जवाहर सिंह साहब जी नूं हालांकि वह बड़ी पुजी हुई शख्सियत सन, मतलब उन्हां दी परवाज ना सखोपत तुरिया तो भी उपर अवस्था पहुंची हुई, रब नाल इकमिक होए हुए, जग नाल तोड़ के रब नाल इकमिक होए पए, पर पता किसे नूं सी नहीं सी, उत्थे ही रहिंदे सी ना, रह पे रह लै झिंगड़ी रह लै नेड़े तेड़े चले गए होर चले गए ते पता नहीं सी। लेकिन एक दिन ऐसी बात हुई, भाई जवाहर सिंह साहब के मन में आया कि किते वो लभ पे ते मेरे को जिहड़ियां रब्बी खजाने दी चाबियां ना मैं दाता सारे उन्होंने दे दवा उहदी झोली च पा दवा। इहदी गल है जी, इन्हां दी गल है राजा साहब जी दी नाभ कमल जी ते कदों दी गल है, जदों महंत गंगा राम नूं जाके बूटा सिंह ने बेनती की जी साडे भी इत्थे चरण पाओ। महंत गंगा राम दा बड़ा नाम, अपनी संत मंडली नूं लैके हां करके आ गए जी। इधरों पिंड वालियां ने बड़ा ही सत्कार किया, बहुत सत्कार दिता, आदर दिता बड़ा, उन्हां दे घोड़े संभाले, उन्हां दे ऊट संभाले, उन्हां दे गड्डे संभाले और सारियां नूं निहारियां दित्तियां। ते बड़ी पिंड विच रौनक, जिवें बहुत वड्डी जंज आवे ना उहदा स्वागत करीदा, इदां संत मंडी दा पिंड वालिया ने झिंगड़ा वालिया ने स्वागत किया। पिंड वालिया ने वेख्या एक बच्चा विच 15 वर्यां दा बड़ा जलवानमा है, उहदी शक्लो सूरत तो तां रोशनाई निकलदी है, किरणां निकलदियां ने। दो दिनां विच पिंडां दे बंदियां ने बीबियां ने देख लिया कि इह जिहड़ा 15 वर्यां दा मुंडा है ना, ये साढ़े झिंगड़ा का असली वाली वारस यही है, यही है। पिंड विच विचरद्या सहज पाठ रख लै, कथा कीर्तन होने लग पिया और बड़ा ही आनंद बन गया, बड़ा ही आनंद बन गया। ते उधर भाई जवाहर सिंह साहब जी ये सोचण कि मुंडा कदों मैनू मिले ते मैं उन्हू खिंच लवां, प्रशादा छकण गए। भाई बूटा सिंह ने सारी संत मंडली का लंगर किया, प्रसाद छकाया, होर जड़े पिंड दे भी सके उन्होंने भी छकाया, गद गद हो गए सारे। जदों संत मंडली वापस आ रही सी ना तां भाई साहब भाई जवाहर सिंह साहब जी ने इस बच्चे नूं खिंच लिया, अपने वल कर लिया, आखण लगे बच्चा किथे संत मंडली नाल फिरदा पिया है, आ मेरे नाल अपने कोल लै गए ना, और जांदियां जांदियां अपने आसन ते बिठा दिता सासन जी, आखो सतनाम श्री वाहे। भाई जवाहर सिंह साहब जी ने 15 वरे दे इस बच्चे नूं अपने आसन ते बिठा दिता, उठा के फिर जफी पा ली, जफी भी इदां दी पाई, मैनूं माफ कर देना मैं मिसाल देण लगा, बड़ी गजब दी मिसाल है। जफी इंज घुट के पाई जिवें गुरु अंगद देव नूं लैणा जी नूं, भाई लैणा जी नूं बाबे नानक ने उजाड़ा जंगलों में जप्पी पाके सहां दी सांझ पैदा की, दिल दी धड़कन पैदा कर ली, सांझ बना ली। ते नाले सवाल कर दिता लैने आ तू पिछे मुड़िया नहीं, गया क्यों नहीं। आखन लगा हे सच्चे पातशाह मैं तुहानू की दसा, तुस ते अंतर जामी हो ना, ना मैं पिछे माया भी छिदी, पिछे मोहरा भी सुटिया, पिछे नूं रुपया पैसा भी सुटिया, जेड़े कोई नहीं मुड़े उन्हां पिछे मैं कुत्ते ला दिते, कुत्का भी चला दिता, पर तू नहीं मुड़े पिछे नूं। हाथ जोड़ के लैणा कहण लगे हे सच्चे पातशाह जिन्हां पिछे कोई सी, जिन्हां पिछे कोई ठिकाणा सी, जिन्हां पिछे कोई मस्कन सी, जिन्हां दा कोई घर घाट सी, जिन्हां दा कोई थां दिता सी, वह सारे मुड़ गए, पर जिहदा थां

पगतना, बहुत गरीब सी, अनपढ़ भी, गावां मझां चरांदा भगत तन्ने बारे भाई गुरदास जी ने अपनी वार विच इस तरह बयान किया है कि जदों इंसान सच्चे मनो उस परमेश्वर की भगति करता है, उहदा नाम लैंदा है, तां उह परमेश्वर किस तरह आके मिलता है जिवें तन्ने नूं मिलिया, भाई गुरदास जी इस तरह बयान करते हैं।

पुजारी ने अपना पिछा छुड़ा लिया। होने ते फर्क है, ओ पुजारी पत्थर दिया मूर्तियां दी पूजा करदा है, पर पत्थर समझदा ते तरने नू उस पुजारी ने कोई मूर्ति नहीं दिती, बारों एक पत्थर चुक के दिता, पर तन्ने दी भावना उस तन्ने ने उस पत्थर नू ठाकुर समझ के ते अपने सिर ते चुक लिया ते मन विच की

तन्ने ने रोटी खाधी। अगला दिन भी लंघ गया, रात पै गई, ओ भी लंघ गई, तीसरा दिन चढ़ गया।

जद तक तू रोटी नहीं खाएगा मैं भी रोटी नहीं खानी पावे मेनू भुखिया मरना पवे। साध संगत जेड़े लोग ए गल कहंदे ने किथे रब किन्ने रब देखे उन्हों पुछो भाई तू इस लायक है कि तू रब नू देख सकी जे देखना है उस नू ते भगत धने वर्गा अपना मन बना लो। कदी क्या किसे ने ऐ ठाकुर ऐ सतगुरु ऐ रोटी पई जदू तक तू नहीं खावेगा असी नहीं खाएंगे। जद कदी क्या नहीं ओनू मिलन दी कोशिश नहीं कीती ते सानू ओ रब ओ सतगुरु किस तरह मिलेगा। ऐ तन्ना बैठे कहन लगा ठाकुर फैसला कर ले है, जे तू नहीं खानी ते मैं भी रोटी नहीं खानी। जद मन विच ए धार ले है, ता उस परमेश्वर नू आना पिया परतक होके तन्ने दिसा

शब्द आप श्रवण कर रहे हो गुरु अर्जन देव पातशाह जी दा शुक्राने दा शब्द है सुलही ते नारायण राख समय दा बादशाह जहांगीर जिसनू ए गल चंगी नहीं सी लगदी के गुरु नानक दे दर दी दिनों दिन वड्याई वधदी जावे गुरु नानक दे दर ते जिथे गुरु के सिख आके जुड़दे सन हिंदू भी और मुसलमान भी रूहानियत प्राप्त करन लई हजूर दे चरणा विच आ जुड़दे सन इस दे मन विच बड़ा दुख सी के गुरु नानक दे दर दी दिनों दिन वड्याई वधदी जा रही है अपने शीपा सलार नू हुकम दिता भई तू कश्मीर नू जा रहे हैं जंग करन लई ते रस्ते विच गोंदवाल नाम करके पिंड है जिथे गुरु अर्जन देव रहिंदा है उस नू भी शोध दा जाए उचारण करो श्री वाहिगुरु ते जदों ए पता गुरु अर्जन देव पातशाह जी नू लग्या ता सिखां ने बेनती कीती जो इस शब्द विच अंकित है प्रथमे मता जे पत्री चलावो द्वितीय मता दोए मानक पहुंचावो तृतीय मता किश करो उपाया मैं सब किश छोड़ प्रभ तू ही ध्याया हजूर अगे बेनती कीती गई के महाराज जे हुक्म करो ता बादशाह जहांगीर नू पत्रका लिख दईए जां दो सियाने बंदे भेज दियो कुछ उपा जरूर करो ता धन गुरु अर्जन देव पातशाह ने आख्या मैं सब किश छोड़ प्रभ तू ही ध्याया नेत नाल जदों बड़े हंकार दे नाल सुली खां चढ़ाई करके आ रहा सी ता इस दा घोड़ा ऐसा पागल होया बलदे पठे विच जा वड़िया ते सुनी समेत स्वाह हो गया एक शुकराने वजो हजूर ने शब्द उचारण कीता सुलही ते नारायण राख सुलही का हाथ कहीं न पहुंचा।

समय दे लोकां ने तां भावें उस नूं शूद्र कहा पर उस रविदास चमार ने राम दा सिमरन करके वाहिगुरु दी भगती करके ओ पदवी पा ली गुरु पंचम।

बस प्रभ आप नानक ते जन सहज समात नानक ते जन सहज समात। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मान योग साध संगत जीओ, सुखमनी अंदर साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज ने मनुख नू ऐसा आचरण जिन्हू असी अज दी भाषा विच सदाचार करैक्टर कहिंदे आ बनाउण दी प्रेरणा दित्ती। ते सतगुरु कहिंदे ने भी मनुख जिहड़ा ना है ते बड़ी वधिया चीज, सब तों श्रेष्ठ है, पर इहदी श्रेष्ठता इस गल तों सिद्ध होएगी कि जिस कार्ज वास्ते इस नूं बनाया गया वो कम इहदे कोलों होया या नहीं होया। यह सिर्फ एक डेकोरेशन पीस ते नहीं, अपने मनोरथ नूं सिद्ध भी करदा है। गुरदेव कहिंदे ने जानकै अंतर वसै प्रभ आप नानक ते जन सहज समात। ते बंदा कहिंदा है कि परमात्मा ते सारिआं अंदर वसदा ही है, वो ते गैर हाजर नहीं है, पर इथे भाव सतगुरु सच्चे पातशाह दा कुछ होर है। गुरदेव कहिंदे ने वसदा ते सारिआं अंदर है, पर जिस मनुख दे सुभा विच सहज विच ए गल बन जाए पी ओ हर वेले ए समझे कि परमात्मा मेरे अंदर वसदा, जे इस एहसास नाल ओ जीण लग पवे जिन्हों असी नाम कहने भगती कहने, ते फिर समझो भी वह अपने जीवन मनोरथ विच सफल होएगा। ताइयों ते सतगुरु जी ने बाणी विच इक थां ते इह गल कही है, कहिंदे ने पशु मिणे चंगियाईआं खड़ खावें अमृत देहें। कहिंदे ने पशुआं कोलों चंगियाईआं मिलदियां ने, जे गऊ दा कर्म दुध देना है जीवन दा मनोरथ तां उह दुध देंदी है, किसी तरह का भी भोजन उस नूं दे दिओ वह दुध देगी। इसे तरह बाकी दे भी जीवन के मनोरथ हैगे ने, ते वह अपने मनोरथां तक पहुंचे हुए ने, पर मनुख के जीवन का मनोरथ नाम है। इस करके सतगुरु कहिंदे ने नाम विहूणे आदमी त्रिग जीवन कर्म करें। कहिंदे ने जिहड़े भी कर्म करदे ने, जिस तरह का भी वह जीवन बतीत करदे आ, लांती है, त्रिकार है, क्योंकि नाम नहीं। इसे करके गुरु श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज ने संस्कृति विच एक बचन कीता, कहिंदे ने गुर मंत्र हीण अस्य जो प्राणी त्रिगंत जन्म प्रश्न है, कूकर है, सूकर है, गर्द बह, काक है, सरपन है, तुल खल है। कहिंदे ने मनुख नाम नहीं जपदा गुरु की सिख्या के मुताबिक तां कुत्ता है, सूर है, सप है, कहिंदे ने जानवर है, मनुख नहीं। ते मनुख दा असला प्रगट हुंदा है उहदी करतूत तो। बाहरों ते चंगे भले कपड़े पा के मनुख बहुत सुंदर बन के संसार विच विचरदा है, लेकिन कई बारी जदों गल माड़ी करदा है कहिंदे बंदा कदा गधा है, कई बारी आने नरा बैल है, कई बारी जदों बहादुरी दा कर्म करदा ते कहिंदे बंदा शेर है, इसे तरह जदों किते डंग मारदा विसा के कहिंदे ते सप है। मनुख दी अंदर दी करतूत प्रगट करदी है कि मनुख अंदरों की है। और खिमा करना, ये माण असी ना करिए कि असी शायद पहलों भी मनुखी सां, पता नहीं कई जन्म पै कीट पतंगा, कई जन्म गजमीन कोरंगा, कई जन्म पंखी सरप होयो, कई जन्म हैवर ब्रिख जोयो, पता नहीं कितों कितों होके आए हैं। ये ते वाहेगुरु अकाल पुरख ने मनुखा जीवन की बख्शिश की है, चांस दिता है सानू। असी पढ़ते हाँ गुरु नानक साहब के इतिहास में एक वार्ता कौडे राक्ष की।

करके आनंद बख्शिश कर दे। महाराज सच्चे पातशाह कृपा कर रहे हैं भाई, जे सुखी होना ता धन दौलत विच सुख नहीं, सोने चांदी दे ढेर ला लै सुख नहीं, महल माड़िया विच

मैं बंदा बेखरीद सखा मेरा मैं बंदा बेखरीद सचैब मेरा जो पिंड सतसा सब कुछ है तेरा माने ने माने तू तने तेरा परवासा बिन साचे अंतिक है तो जानू काचा।

तो तुम पे लेना, तुम मेरा गहना, जो तू दे सोई सुख सेना। तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा

जियो तुमरी कृपा ते तुझ पछाणा तुमरी ओट तू है मेरा माणा तो बिन दूजा और न कोई सब तेरा खेल अखाड़ा जियो तुर बिन दूजा और न कोई सब तेरा खेल अखाड़ा जियो क्या कहिए किस आस सुनाइए जो कहना तो प्रभु जी पास सब कुछ किता तेरा वरते सदा सदा तेरी आस जिदे वड्याई ता तेरी वड्याई

जो तो करे करावे स्वामी हा मसलत परवा चरु सर्व हम अनाथ ना थकन अपनी कृपा करे चरु कमल मालक आरा दे किस दिन आम के पर परमेश्वर गत नारायण तन गोपाल गुण साखी।

हम जाएंगे तो तुम ते लेना तू मेरा देना जो तू दे सोई सुख सहना जो तू दे सोई सुख सहना हर आपे हुए कृपाल आप ही लाएंगे।

मदिन होत साधु तुरे आउन जानू रेखित पाई जल मरन के मिटे वसूरे गुरु नारायण दा गुरु गुर सच्चा दिन हार गुर टुटे सब कुछ पाया जन मानस सब बनिहार हर गुरु गा।